फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते खालिस करते हुए उसी के लिए इताहत को, लेकिन जब वो इनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिर्क करने लग जाती हैं, ताकि जो हमने इनको बख्शा है उसकी नाशुकरी करें और फायदा उठाएं। सो खैर, हम करीब इनको मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को मकाम अमन बनाया है और लोग इनके गिर्दो नवाह से उचक लिए जाते हैं? क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुकरी करते हैं? और उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे, या जब हक बात उसके पास आए तो उसकी तकजीब करे? क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मेहनत की, हम उनको जरूर अपने रास्तों पर चला देंगे, और अल्लाह तो नेकुकारों के साथ है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: खुशकी और तरी में लोगों के अमाल के सबब फसाद फैल गया है, ताकि अल्लाह उनको उनके बाज अमाल का मजा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाएं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका कैसा अंजाम हुआ है। उनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे, तो उस रोज से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, सीधे दीन के रस्ते पर सीधा रुख किए चलते रहो, कि उस रोज सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का जरर उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करती हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला दे, बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता।
1: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

अमेरिका जा लगातार टी रात भी ईरान ते हमला दखण ईरान जा शहर बंदर अब्बास बोशेर कशम केश ऐं अबू मूसा में धमाका अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो चवण आहे त ईरान ते टी रात भी हमलन जी शुरुआत करे छॾी आहे।

0: कि बहरी जहाज के क्रूज मिसाइलनि सां निशानो बणाइण जी दावा ईरानी मीडिया जो चवण आहे त कुवैत में अमेरिकी फौजी हंधनि खे ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो। आबनार हुर्मुज़ में भंजकड़ी करण ते केतरनि ई जहाज़नि खे निशानो बणायो वियो। गॾियल अरब इमारात जी दिफ़ाई वज़ारत जो चवण आहे त ॿिनि ऑयल टैंकर्स ते ॿिनि क्रूज मिसाइलनि सां हमिलो कयो वियो आहे। हमले में टैंकर्स हमले जो हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो, अठ ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। वाकियो उमानी इलाइक़े पाणी में पेश आयो आहे। ॿिन्ही टैंकर्स खे लॻल बाहि ते ज़ाब्तो आंदो वियो आहे। जवाबी कार्रवाई जो हक़ महफ़ूज़ रखूं था। अमेरिकी सदर ट्रंप जो चवण आहे त अॼु वधीक हमलनि जो ऐलान। संदसि चवण आहे त मुफ़ाहिमती यादाश्त नामो आज़माइश हुई, ईरान पासदारी न कई। सेंट्रल ईरान जे कोलांग काज़ाला खे निशानो बणाइण वञी रहिया आहियूं। ईरान सां मुआहिदो मुमकिन आहे। ईरान ते बमबारीअ खां वधीक नाकाबंदी फ़ाइदेमंद आहे। जल्द आबनार हुर्मुज़ जी नाकाबंदी कई वेंदी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो आबनार हुर्मुज़ जे ॿीहर नाकाबंदी ऐं आबनार हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां 20% फीस वठण जो बि ऐलान। ट्रंप चयो आहे त नाकाबंदी रुगो ईरान ऐं संदसि ग्राहकनि लाइ हूंदी, ॿियनि मुल्कनि खे आबनार हुर्मुज़ इस्तेमाल करण जी आज़ादी हूंदी। आबनार हुर्मुज़ जो कंट्रोल जल्द अमेरिका संभालींदो। हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे 20% फीस ॾियणी पवंदी। अमेरिकी सेनेट काम जो चवण आहे त 15 जुलाई खां आबनार हुर्मुज़ जी नाकाबंदी कई वेंदी। ईरान आबनार हुर्मुज़ जो मुहाफ़िज़ आहे, हमेशह रहंदो। ट्रंप दुरुस्त थो चए त आबनार हुर्मुज़ खां गुज़रण जहाज़नि खे तहफ़ुज़ ऐं सहूलियत फराहम कंदड़ खे मुआवज़ो मिलणु घुर्जे, पर जेको कमर्शियल जहाज़नि खे पुरमन सहूलियत फराहम करे थो मुआवज़ो हुनखे मिलणु घुर्जे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची जो सोशल मीडिया ते पैगाम। संदसि चवण आहे त फीस 20% घणी आहे। असां शफ़ाफ़ रवैयो इख़्तियार कंदासीं। ईरानी ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर्स तर्जुमान जो चवण आहे त ईरानी फ़ौज खां राब्तो करण बिना आबनार हुर्मुज़ में अमेरिकी सरगर्मियुनि जी मज़ामत कंदासीं। कराची जे पोश इलाइक़े क्लिफ्टन में रोहड़ी वासी डॉक्टर आकाश कतल। वारसनि जो केतिरा ई कलाक तीन तलवार ते लाश रखी धरणो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब धरणे वारे हंधि पहुतो। अॼु शाम ताईं कातिल गिरफ़्तार करण जी ख़ातिरी मक़तूल डॉक्टर जे वारसनि धरणो ख़तमु करे छॾियो। ज़ुल्फ़िकार जूनियर बि यकजहती तौर धरणे में पहुतो। डॉक्टर जो कतल बदतरीन बदमनीअ जो सबूत आहे। डॉक्टर प्रकाश जे वारसनि जो चवण हो त प्रकाश खे ॾींहुं ॾिठे बैंक साम्हूं सरेआम क़तल कयो वियो। सिंधियुनि खे टारगेट करे क़तल कयो पियो वञे। पुलिस तमाशो ॾिसी रही आहे। अॼु शाम ताईं कातिल गिरफ़्तार न थिया त ॿीहर धरणो हणंदासीं। कंदकोट में लोलाई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल ऐं मारिजी वियो। झंगेण थाणे जी हद में ज़मीन जे मामले तां झेड़े में फायरिंग जे नतीजे में मुरीद लोलाई मारिजी वियो। कंदकोट पुलिस वाके वारी हंधि पहुची लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो। ऐं कश्मोर वेझो RD-140 वटि BS फीडर खे लॻल घारो 3 ॾींहं गुज़रण बावजूद बि बंदि न थियो। केतिरा ई ॻोठ ॿुॾी विया। पाणी घरनि में दाख़िल, ज़िंदगी मफ़लूज। फसल पाणी हेठि अची विया। आपाशी इंतिज़ामिया गुम। चीफ इंजीनियर गुडू बैराज जा छिरकाईंदड़ इंकशाफ़ साम्हूं अची विया। KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चीफ इंजीनियर गुडू बैराज जो चवण आहे त घारो हथ सां हयो वियो आहे। अणॼातल माण्हुनि ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराए छॾी आहे। ग़फ़लत जे इल्ज़ाम हेठि सब इंजीनियर ऐं SDO समेत 3 अमलदारनि खे मुअतल करे मथनि कार्रवाई सेक्रेटरी आपाशीअ खे सिफ़ारिश करे छॾी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ॿिए ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।

पाकिस्तानी सियासत जो बेड़ो वफाक जो साहिल कौमी धारा मुल्की मईशत जो घुमंदर फिरंदर थी थो सूबाई असेंबली खां आला एवानन ताईं पावर कॉरिडोर में छा फैसला थी रहा है असांजी ज़रात सनत ऐं असांजी अफरादी कुवत असां ठाहींदासीं मज़बूत पाकिस्तान इक़्तिसादी बहरानन जी आड़ में जनम वठी रहा आहिनि मुआशी तरक्की जा ख़्वाब सियासतदान जी चाल छा आहे ब्यूरोक्रेसी जो हाल छा आहे छा आलमी मंज़रनामो तब्दील थी रहियो आहे जॾहिं ख़बरूं सुर्खियूं बणिजी वेंदियूं आहिनि तबसरनि ऐं तज़ियनि मां निकिरंदा आहिनि सोच जा नवां रुख हिकु आम पाकिस्तानी जे सवाल जो असां बणजंदासीं आवाज़ आउं आहियां जी एम जमाली ऐं अव्हां ॾिसंदा फ्रंट पेज विथ जी एम जमाली सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ KTN न्यूज़ ते।

0: अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केटीएन न्यूज़ सां गॾु मां आहियां सुनीता ओड। ख़बरुनि जो आगाज़ कंदासीं हिन ख़बर सां गॾु। पाकिस्तान जे सऊदी अरब जे होसी हमलनि जी मज़म्मत। गॾियल क़ौमनि में सलामती काउंसिल जे इजलास में पाकिस्तान जे नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे जो ख़िताब। पाकिस्तान जे यमन जी ख़ुदमुख़्तियारी, आज़ाद इतिहाद ऐं सलामती जी हिमायत करे थो। सऊदीअ ते होसियुनि जी ब्लैक लिस्ट मिज़ाइल हमले जी मज़म्मत करे थो। ख़िते में वधंदड़ शिकतान जे ख़ात्मे जो वाहिद हल सिफारतकारी ऐं सबर जो दग इख़्तियार करणु आहे। पाकिस्तान जे सऊदी अरब ते होसी हमलनि जी मज़म्मत। गॾियल क़ौमी सलामती काउंसिल जे इजलास में पाकिस्तान जे नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे जो ख़िताब। पाकिस्तान जे यमन जी ख़ुदमुख़्तियारी, आज़ादी इतिहाद ऐं सलामती जी हिमायत करे थो। सऊदी होसियुनि जी ब्लैक लिस्ट मिज़ाइल हमले जी मज़म्मत करे थो। गॾियल क़ौमनि में पाकिस्तान जो मुस्तक़िल नुमाइंदो। ख़िते में वधंदड़ छिकताण जे ख़ात्मे जो वाहिद हल सिफारतकारी ऐं सबर जो दग इख़्तियार करणु आहे। नाज़रीन, अव्हां सां हिकु दफ़ो शेयर कंदा हलूं त पाकिस्तान जे सऊदी अरब ते होसी हमलनि जी मज़म्मत। गॾियल क़ौमी सलामती काउंसिल जे इजलास में पाकिस्तान जे नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे जो ख़िताब। पाकिस्तान जे यमन जी
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03005365।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Aashiq Honda Showroom Mehrapur, Atlas Honda Motorcycle Group Pur Etmad, Aimba Akhtar 3S Dealer, Aashiq Honda Motors Mehrapur, Jite Nai Motorcycle Ji Sale, Company Aje Mukarar Kel Rate De Dastiyaba Hai, Service Center, Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center, Service Area, Jite Honda Motorcycle Ji Behtreen Service Kaivendi Aye, Honda Company Aja Tamam Genuine Spare Parts, Khususi Riyatate Maujood, Aashiq Honda Motors Te, Pahenje Honda Motorcycle Ji Tuning Karayo, Computerized Japanese Stitching Machine Je Zariye, जहमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार यार दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अमरीका ईरान विच में अपना फर्मस का शुरू थियल चकतान खत्म न थी बिन्हीं मुल्क के अकबे से हमला जारी अमरीकी फौज लगातार पंज कलाक ईरान के मुख्तलिफ शहर से बमबारी सेनका मौजब बौशर जाफार जासक कनार्क अबू मुसा और बंदर अब्बास से हमला किया गया हमलों दौरान ईरान के दिफाई निजाम ड्रोन ए मिजाइल थाकन बहरीन शरायतन के निशानो बनाया वो ईरानी फौज का अमरीकी अड्डन से जवाबी हमला बहरीन जेल जफीर हवाई अड्डे के निशानो बनाया वो उर्दन में भी अमरीकी अड्डन के निशानो बनाया वो गडल अरब इमारत मौजूद विच ओभर में बिन बहरी जहाजन से ईरानी हमले के नतीजे में एक भारतीय शहरी मारज पो अठ जख्मी थे
1: पाकिस्तान पारा सऊदी अरब से हूसी बागिन के हमले की मजम्मत गडियल कौमन की सलामती काउंसिल के इजलास के खिताब कंदे पाकिस्तान के नुमाइंदी उस्मान जदून चयो तो पाकिस्तान यमन की खुदमुख्तियारी इतिहाद ए सलामती की हिमायत करे तो खिते में वधंदड़ छिकटाण के खात्मे जो वाहिद हल सफारतकारी है।
0: कनकोट में लोलाई बिरादरी के बिंदुड़ में झेड़ो एक जड़ो मारज पो जगण थाने जेहद में जमीन के मामले तेड़े में फायरिंग सबब मुरीद लोलाई मारज पो है कनकोट पुलिस वाके वाले हंध पहुंची लाज जरूरी कार्रवाई का अस्पताल मुंतकिल किया।
1: कश्मोर वेझो आर डी 140 वट बीएस फीडर के लगल घारो टे डी गुजरण बावजूद बंद न थो केतरा ही गोठ बुडी वया पानी घर में दाखिल फसल पानी हेठ आपाशी इंतजामिया गुम केटीएन न्यूज से गालाइंदे चीफ इंजीनियर गुड्डू बेराज चवण है त घारो हथ से हयो वो है एफआईआर दाखिल कराए छी है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, रंग वगैरह बाजार का बार दस्तियाब आई।
4: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-46-0100।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0302018-00003।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
7: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी। ईंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
4: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर।
8: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
9: 0301-399-2836।
10: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम। यू आर शेयरिंग इन टू जी रेडियो FM 88 और साथ साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सूची हसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज रुखसार सिंध की आवाज। कैसे हैं आप? आई होप सो जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप कूल एक साथ एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार है, पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, क्योंकि आप सुन रहे हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा जारी सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। प्रोग्राम में सबसे पहले वक्त की बात करेंगे, 11:18 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बट अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलब।

की सालगिरह है उनको कहेंगे many many happy parents of the day, happy birthday to you. और जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे get well soon. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो wish you a very very best of luck. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और चौबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं में गुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन व सहलन, मरहबा, बखैर आगे ले जी आया नुसर, बिस्मिल्लाह, बोंजोर, शाओ, नी हाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुजार है. प्यार में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं सब कुछ करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे इसी के साथ. स्टे ट्यून्ड.

0: पाकिस्तान की शान वादी महरान, महरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते, पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: 3000 next caller. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam. कौन बात कर रहे हैं?
1: हाफिज लखमीर से हम.
0: हाफिज लखमीर भाई, गाना सुना दें अच्छा सा.
1: गाना सुनाओ.
0: हाँ जी, जल्दी से.
1: दिल थे पत्थर जो आठ हल, एक डबी थी दो अच्छा कोई संग दिल, दुखन था मुखे खपन कुछ घुरान थो, बदल में दीदार दी खरात थो घुरा तारू अजाए. ये
0: किसका गाना है? ये
1: मुनर मंतान बोले.
0: ठीक है, किसी को डेडिकेट करना है?
1: आप सामने जो भी सुन रहे हैं मेरे फैन सबको अस्सलाम वालेकुम.
0: ओके, सो अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. ये गाना मैं सर्च कर रही हूँ तो ये गाना मुझे मिल नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? कुछ और प्ले किया जाए? कुछ और प्ले करें? कुछ और प्ले करते हैं. एंड कुछ और इज द ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय आतिफ असलम.

Young. आज का जो टंग ट्विस्टर है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोग कहेंगे किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई। जल्दी जल्दी बोलेंगे इसको, किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई, किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई। ठीक है, इस तरीके से गाना गाने के साथ।

0: और शहरों, मीरपुर खास, लाड़काना।
1: अब आप सुनेंगे।

खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320-1800-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM
4: 94-300-1134-88 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। और कॉल करने के बाद आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी। और इसके अलावा आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त हमें मैसेजेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले मैसेजेस की तरफ आती हूँ, क्योंकि अभी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला है, ठीक है जी। तो इस टाइम को हम सही तरीके से मैनेज करते हैं, और साथ साथ हम अपना टंग ट्विस्टर वाला सेगमेंट भी स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बोलो तो माने। आज के बोलो तो माने सेगमेंट में क्या टंग ट्विस्टर है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। वैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ज़रूर बताया था आपको, और एग्जैक्टली बताया था, बट दोबारा बताऊँगी। Hips turn like his eyes. I really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama?

0: ओके जी, कॉल्स लेते हैं जी. और कॉल्स से पहले, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस जिसको हम इंक्लूड करते जाते हैं, तो हमें मैसेज किया है जी हैप्पी गर्ल ने. हैप्पी गर्ल लिखते हैं, शो सुपर डुपर है. अस्सलाम वालेकुम स्वीट आरजे, मैंने आपका शो कल से सुना है. आपका शो सुपर डुपर है और आप उससे भी ऊपर. ओके, आप कहती हैं तो मान लेते हैं. हैप्पी गर्ल और मेरी बुआ सीमा आपका शो रोजाना सुनती है, वो आपकी फैन है. अरे वाह, क्या बात है. जो मेरे फैंस हैं मैं उनकी फैंस हूँ, ठीक है. और बस उन्हीं की, उसके अलावा और किसी की फैन नहीं हूँ मैं, ठीक है. जो मेरे फैंस हैं मैं सिर्फ उन्हीं की फैंस हूँ. अच्छा, आज का टंग टेस्टर कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग मुझे बताएं, कह के दिखाएंगे. किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई. सो देखते हैं आज का टंग टेस्टर कौन कह पाता है. सो इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर, हेलो,
1: सलाम अलैकुम.
0: अरे सरदर्द, क्या खा के कॉल की है? चाय पी थी. चाय का कमाल है, देख लें, चाय ऐसे काम करवा देती है कि कॉल लगवा देती है ना. चलें इसी बात पे फिर टंग ट्विस्टर कह के दिखा दें.
1: आप एक बार रिपीट करें.
0: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई.
1: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई. किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई.
0: चलो खैर, कोई बात नहीं. बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी. और कुछ कहेंगी सरदर्द?
1: अच्छा, कल बहुत कोशिश की थी आपको कॉल करने की, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी.
0: कॉल लग नहीं रही थी, अब लग गई.
1: जी अब लग गई.
0: कौन सी आवाज में गाने?
1: इस
0: माँ किशोर भाई पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं नाराज हैं, क्या बात है, क्यों है, कैसे है, बट यही है. लेकिन आ जाएंगे मेरे ख्याल से, सुन तो रहे होंगे.
1: पता नहीं.
0: हाँ सुन रहे होंगे. अच्छा चले ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सरदर्द. अल्लाह हाफिज़.

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं और 03000113488 नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मैं किरण बात कर रही हूँ.
0: किरण बात कर रही हैं
1: जी.
0: कहाँ से?
1: मोरो सिटी से बात कर रहे हैं.
0: ओहो, मोरो सिटी से बात कर रही हैं. प्रोग्राम सुनती हैं किरण
1: जी? सुन रहे हैं.
0: ओके, जबरदस्त. मुझे ये बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुना है? कितने टाइम से मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं?
1: रोजाना सुनते हैं.
0: पहली दफा कॉल लगी है या की ही आज है?
1: नहीं, आज मैंने कॉल की है.
0: ये तो बहुत अच्छा हो गया. अच्छा, टंग ट्विस्टर बोलेगी?
1: जी.
0: तो बोले
1: दोबारा से मुझे एक बार बता दीजिए.
0: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई. ओके, वेरी नाइस किरण. कुछ और कहना है किरण
1: जी? मेरी बोले
0: किसका सॉन्ग?
1: तेरी खैर मंगदी.
0: तेरी खैर मंगदी, चले जरूर प्ले करेंगे जी. थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना.
1: थैंक यू.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज.

0: के हो तो आवाज।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: Gigi, very nice song. और इसी के साथ हम सॉन्ग चेंज करेंगे और प्ले करेंगे जी दो नंबर. सो हियर कम्स दो नंबर सॉन्ग और ये हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ साथ आज के लास्ट एंड लकी कॉलर्स भी लेंगे.
1: तेरा नशा मेरे सिर पे छा गया.
0: आगे लास्ट एंड लकी कॉलर्स. हेलो वालेकुम अस्सलाम. इतना स्लो क्यों बात कर रहे हैं?
2: फहद बात कर रहा हूँ.
0: फहद?
2: फारूक.
0: फारूक, फारूक कैसे? ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह. आप कॉल ही नहीं लगती आपकी, आप कॉल लगती है बता.
0: कॉल नहीं लगती, बस क्या करें, बिजी होता है ना नंबर, बिजी शो है, मतलब शो इतना अच्छा होता है कि लाइन बिजी होती है. तो आप दोबारा दोबारा ट्राई किया करें, जल्दी जल्दी मिलाया करें ताकि आपकी कॉल लग जाया करे.
2: तकरीबन 100 दफा कॉल लग गई है.
0: 100 दफा कॉल लग गई है?
2: नहीं लगाई है तो नहीं लगा नंबर अभी, लास्ट का दफा मैंने खतरे लगा.
0: चले लास्ट लकी कॉलर है आज के फारूक. आप हमें ये बताइए आज की अच्छी बात क्या है?
2: अच्छी बात कौन सी बताऊं? कोई आप बताए.
0: मैं तो बताती ही हूँ लेकिन आपसे पूछनी है ना, जो लिसनर्स आएंगे लास्ट में उनसे पूछनी है, ये शो का रूल है.
2: अच्छा अच्छा.
0: यस, कोई भी अच्छी बात जो जहन में रैंडम अचानक से आ रही हो इस वक्त मौजूद हो.
2: नहीं अभी तो नहीं, कोई
0: नहीं आ रही. अच्छा कोई बुरी बात आ रही है जहन में?
2: नहीं नहीं अभी ड्यूटी में बैठा हूँ. रेगुलर शो
0: ओके चलें इसी तरह सुनते रहे, इंजॉय करते रहे, इंशाल्लाह आपके जहन में फिर अच्छी बातें जरूर आया करेंगी.
2: पाकिस्तान आर्मी के नाम कोई नगमा चला.
0: ओके पाकिस्तान आर्मी के लिए सॉन्ग चलाते हैं. ओके
2: आपका आपका शो तकरीबन फौजी सुनते हैं और मैं भी अभी आपका शो सुन रहा हूँ.
0: चले इसी बात पे हमारे फौजी भाइयों के लिए हम एक गाना प्ले करते हैं लास्ट में, ठीक है?
2: ठीक है.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.

ओके और इसी के साथ फाइनली मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है. SRH आपका मैसेज आया है, कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो आप तो फिर हम सेगमेंट के विनर कैसे बनेंगे. ओके बहुत सारे लोगों की लगी होगी, बहुत सारे लोगों की नहीं लग पाई होगी, खैर कोई बात नहीं, कल करेंगे ना शो तो कल कर लेंगे ठीक है. और लास्ट में जैसे कि लास्ट कॉलर ने कहा कि हमारी पाक आर्मी के लिए, पाक आर्मी के जवानों के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग चला दें, तो बिल्कुल प्ले कर चुकी हूँ. और इसी के साथ फाइनली लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मेरी आपसे चर्चा होगी कल. On same time, same channel, same show with the same RJ, so na mat bhuliyega. Zindagi gulzar hai, apna bahut sara khayal rakhiyega. This is me, RJ Rukhsar, signs out. Take care, goodbye. Ba amani khuda, Allah hafiz.

0: AM. This time check is gone.
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: जारी वधी के चार दहशतगर्द जहनम भेड़ा ऑपरेशन दौरान मारजी वेल दहशतगर्द जो अंग वधी 200 121 थी वयो सिक्योरिटी जरियन मौजूद बलूचिस्तान में पाक फौज FC ए पुलिस जो गडियल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन दौरान वधी के चार दहशतगर्द मारजी वया हन। ऑपरेशन शोभान में मारजी वेल दहशतगर्दन जो अंग वधी 83 थी वयो गडियल ऑपरेशन दौरान मारजी वेल दहशतगर्दन जो अंग वधी 121 थी वयो है।
3: अमेरिका ईरान विच में अपना हुरमस्ता शुरू थे चिकटाण खत्म न थे बिन्हीं मुल्कन जा हिकबे ते हमला जारी। अमेरिकी फौज लगातार 5 कलाक ईरान के मुख्तलिफ शहरन ते बमबारी सेंटकॉम मूजिब बशर जापार जासिक कनार अबू मूसा ए बंदर अब्बास ते हमला किया वया है। हमलन दौरान ईरान के दिफाई निज़ाम ए ड्रोन ए मिसाइल थाकन के बनाया वो। ईरानी फौज जब अमरीकी अडन से जवाबी हमला बहरीन जल जफीन हवाई अड्डे के निशानों बनाया वो। उर्दन में भी अमरीकी अडन के निशानों बनाया वो। गडल अरब इमारतन मौजूद विच ओभर में बिन बहरी जहाजन से ईरानी हमले के नतीजे में एक भारतीय शहरी मारजी वो 8 जख्मी थे।
2: कराची में फुर मज़ाहमत कतल थे डॉक्टर आकाश केस जा जवाबदार जाम शोरे मां गिरफ्तार। पुलिस सागर रामचंद के गिरफ्तार करे जांच शुरू करे छी। मकतूल आकाश के मड जो आखिरी रस्मू जारी वारसन चयो है त आकाश के आखिरी रस्मन बाद केस दाखिल करायो वेंदो।
3: जगमबाद पुलिस तथा गिरफ्तार थियल मैंने चार्ल जखरानी जो नंढो भाव आजाद जखरानी कराची मुंतकिल लगुणे मैंने मरूम बाबल खान जखरानी नंढे पुट मीर आजाद हुसैन जखरानी नंढे पुट मीर जेर खान जखरानी की वफात बाद एजाज हुसैन जखरानी सस नंढे भाव मीर आजाद खान जखरानी में इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुआ।
2: संत कोट में लोलाई बिरादरी के बिन धुरन में संगावती तकरार तां जेड़ो एक जनो कतल गोठ फौजू लोलाई में संगावती तकरार तां धुरन में जेड़ो थियो। फायरिंग के नतीजे में मुरीद लोलाई मारजी वयो एक जनो जख्मी थियो। राधन भरसा प्लाट के तकरार तां घर बाहरा सुतल गोठानो कतल तालिब कलोड़ो के कुआड़न जा वार करे कतल कयो वयो। खैरपुर नाथन शाह के गोठ आढ़ो खान गाड़ाई में हथियार बंधन हथा नौजवान मोहम्मद बलोच कतल कारण मालूम न थियो। शक की बुनियाद से एक जनो गिरफ्तार।
3: सिंध में ज़री पानी की खोट बरकरार मुख्तलिफ़ शहर में मुजाहरा ऐं धरणा। कनकोट में कौमी अवामी तहरीक पारा मुराद वाह में पानी खोट खिलाफ़ डीसी आफ़ीस जो धरणो। टंडो गुलाम अली भरसां बि पानी खोट खिलाफ़ आबादगार जो धरणो। मुरादाबाद के पुछड़ ताईं पानी न पहुचण जो मुतालबो करियो। ख़बर में पई इमाम बाजा जागीरबाग में पानी शदीद खोट खिलाफ़ आबादगारनि कराची बदीन रोड ते धरणो हयो। खैबर वेझो गोठ पुनू हिंगोरो जे रहवासियुनि सुई कुंदर शाख में पाणी खोट खिलाफ़ एहतजाज। शाख में पाणी छॾण जो मुतालबो।
2: कश्मोर वेझो RD 140 वट BS फीडर के लगल घारो 3 ॾींहं गुजरण बावजूद बंद न थियो। केतरा ही गोठ पुॼी विया पाणी घरनि में दाख़िल फसल पाणी हेठि आपाशी इंतिज़ामिया गुम। KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज जो चवण आहे त घारो हथ सां हयो वियो आहे। FIR दाख़िल कराए छॾी आहे।
3: हफ्त वक्त कराची बस सां समुंड में किरी तबाह थियल कार्गो जहाज जी मिछाणी वासी को पायलट गायबाना जनाद नवाज़दा गोठ थोड़ा शरीफ में को पायलट फैसल महमूद जतोई जी गायबाना जनाद नवाज़दा कई वही। को पायलट जनाद में इलाके वासन चल समाज पाण शिरकत कई। शायद पायलट के वालिद रिटायर्ड कैप्टन नाज़िमुद्दीन जतोई हादसे की जांच करण जो मुतालबो करे चयो। मुस्तक़बिल में अड़न हादसन का बचण लाइ शफाफ जांच ज़रूरी आहे।
2: ब्रिया सिटी भरसा तेज रफ्तार ट्रालर के टक्कर में पोरेत फोत ट्रालर ड्राइवर फरार। फोती पोरेत की सुणप इकबाल कलोड़ के नाले से कई वही।
4: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
5: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का न्यू लुक।

वक्त हालतूं आए वाकया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली। हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू वसी आए गहरो नुक़्ता नज़र सिर्फ़ इनसाइड विद नाज़िरा मीर सां।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और जनाब अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो जाहिर सी बात है शामिल प्रोग्राम होकर आप हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाएंगे ना। इसी के साथ साथ बताएंगे जी क्या तरीकेकार है हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनने में। लेकिन यहाँ पर जो है ना आप लोगों से आज के प्रोग्राम का जो सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या होने वाला है वो जरा जान लेते हैं। ओके जी, तो आज मेरा आप लोगों से सवाल जो होने वाला है वो थोड़ा सा ऐसा कह लेते हैं कि नॉर्मल सा हो सकता है, क्योंकि कुछ बातें हमें जिंदगी में जाननी चाहिए और कुछ बातें अगर हम जानना चाहते हैं और उन्हें जान नहीं पाते हैं तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में कंफ्यूज ही रहते हैं। तो आज आप जो हैं मैं आप लोगों से जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब मुझे बताएंगे। तो सवाल कुछ इस तरह होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि क्या हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अक्सर इस बात के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी बात जो है वो बढ़ सकती है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हाँ मिलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, हमने ज्यादातर लोगों ने ये भी देखा होगा अपनी जिंदगी में कि अगर आप किसी को एक और मौका देते हैं अपनी जिंदगी में तो वो उससे भी बहुत बड़ा कांड आपकी जिंदगी में कर जाता है जितना उसने पहले किया हुआ था। समझ रहे हैं? तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या हर इंसान को एक और दूसरा मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, बड़ी बड़ी टॉर्चों के साथ जरा रोशनी डालिए इस टॉपिक के ऊपर और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो के लाइव पोस्ट मिलती है जिससे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दिया करें। अच्छा हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पोस्ट को लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया करें भाई, कंजूसी यहाँ पर अच्छी नहीं लगती।

0: आपने डायल करना है 03-15-799-0595 बुड़ी 315-79-90-595 ओके जी, सो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि क्या हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ आदिल मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, तेरी कुर्बत भी नहीं हुई मयसर और दिन भी बारिशों के आ गए हैं। ओके आमिर अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, हाय मासूमा, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ओके जी, खुशामदीन। चाचा खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कैसी हैं, हो फाइन, यस। कहती आज टॉपिक क्या सोच कर आई हैं आप, मैंने बता दिया, बताएं जरा आप टॉपिक के ऊपर क्या कहेंगे। वासु भाई मौजूद हैं, हेलो वासु भाई, कैसे हैं। अली अकबर ब्रोही हमारे साथ ही सकरण से हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, अच्छी आवाज के साथ साथ प्रोग्राम गुड है और सॉन्ग की रिक्वेस्ट है फोजिया सुमरो सुनाइएगा। ओके आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। अवेश अब्बास सोलंकी हमारे साथ ही, सरफराज अली भी हमारे साथ हैं, दोनों को वेलकम करते हैं। और हैं जी गुलाम फरीद बलोच, वालेकुम अस्सलाम गुलाम फरीद जागीरानी, संघी से क्या हाल है, तबीयत ठीक है और सारे लोग ठीक हैं जनाब, कोई सॉन्ग तो सुना दीजिए। ओके जी, कोई नहीं, बहुत ज्यादा वाले सॉन्ग्स आपको सुनाएंगे, बस आप थोड़ा सबर कीजिए। चाचा खालिद कहते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट प्लीज नोटेड, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। चलें जी लगाएंगे सबके गाने। दो दाली हमारे साथ हैं, गुलाम फरीद बलोच भी हैं और आमिर कहते हैं मासूमा ये पोइट्री है, बदलता वो है जिसने सिर्फ सूरज से मोहब्बत की है, जो रूह को जो रूह का कैदी हो वो रिहाई नहीं मांगता, क्या बात है जी। और फहीम शेख हमारे साथ जी मौजूद हैं प्रोग्राम में, वालेकुम अस्सलाम इन मौला इस्लाम अदर। और योगी बाबा हैं, अस्सलाम वालेकुम डूड, वालेकुम अस्सलाम डूडी, जो मैं सोच रही हूँ वही हैं आप। अब्दुल सतार हमारे साथ हैं जी, गुड मॉर्निंग। और नखा अलावा फहीम कहते हैं भाओ की आयो, सफा चाक आयो, सफा चाक कलम स्लेट तामुदा की आयो। और मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। और नखा अलावा फहीम कहते हैं गानो बुधराए जो सब भी नहीं के अच्छा ना साईं गाने जी लगी वही हां ये जो पोस्ट के लाइक शेयर कयो था वे। चले मैं कोशिश करूंगी, गाने लगा देंगे आप लोगों के। सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ हैं जी, थैंक यू जी, थैंक यू। और जानी इब्राहिम भाई हमारे साथ कहते हैं माशाल्लाह शो, थैंक यू। और हैं जी हमारे साथ अमानुल्लाह शेख, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं मैं बहुत दिनों के बाद आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ, आप कैसी हैं, आप हमारे गाँव में। अच्छा कहते हैं अब हमारे गाँव में चावल की खेत का काम शुरू हो चुका है, यानी कि मुझे लग रहा है अब आप थोड़ा फ्री होंगे, इस वजह से आप हमारे प्रोग्राम में आना स्टार्ट कर देंगे, बहुत शुक्रिया जी, आइएगा बिस्मिल्लाह। और आमिर कहते हैं मैंने आपका नाम रखा है मासूमा, नाराज तो नहीं है ना आप, जो नाम रखा है आपका नहीं बस सही है। और मोहम्मद जमान हमारे साथ हैं, गुड आफ्टरनून भाईजान, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। ऐसे ही आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और जरा बताइए आप कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे साथ मौजूद है और टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना है कि एक इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं। और इसके साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाने लगे, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए और साथ दीजिए, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।
1: FM 88 Network, सिंध की आवाज।
2: लाड़काने वासे लाए खुश खबरी, डॉक्टर अजीत कुमार सचदेव।
3: मशहूरी कराई थी
4: ना दा
3: यार।

0: थींदड़ मुकाबला तहरीर तकरीर ऐं ज़हनी आज़माइश जा मुकाबला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणियुनि ऐं प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम ऐं तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो। वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण, मैनेजिंग डायरेक्टर, मज़हर स्कूल सिस्टम। कॉन्टेक्ट नंबर 03000002724। निसार अहमद मेमण, प्रिंसिपल, मज़हर स्कूल सिस्टम, मेहरापुर। कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण, MA, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बे डरंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

म्यूजिक प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड ए स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी खूबसूरती बढ़ती रहे और आप शाइन करते रहे, ग्लो मिलता रहे और खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे। तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत हो, समात हो और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके, सो यहाँ पर प्रोग्राम में मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है। आप मुझे बता रहे हैं, बताइए जल्दी जल्दी कि क्या एक इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। इस बात के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो माहौल ऐसा बन सकता है कि लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपकी क्या राय है कि जनाब एक इंसान को क्या दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं। और जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, प्यारे प्यारे फीडबैक्स हैं। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि पता चले कि आप पोस्ट से जो है ना वो वाकई मोहब्बत करते हैं, ताकि जितनी भी पोस्ट आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर हम लगाएंगे तो हमें फायदा क्या मिलने वाला है, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम को लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जनाब इस क्रीम को लगाने के बाद आपकी खूबसूरती जो है ना वो हमेशा मेंटेन रहती है। अगर देखा जाए तो आप लोग गोरेपन के चक्कर में अपने चेहरे का ना मतलब थोड़ा हशर नशर कर चुके हैं, तो गोरापन बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन गोरापन तो मिलेगा लेकिन साथ साथ आप लोगों के चेहरे के प्रॉब्लम्स भी दूर होते रहेंगे। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा है, मिल्क है और ये सब चीजें मिलकर आप लोगों की हुस्न को बढ़ाएंगे और आप लोगों को एक अच्छा सा ग्लो देंगे। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स अगर आप दूर करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एश ब्यूटी सोप भी मिल रहा है और व्हाइट एश ब्यूटी सोप के अंदर भी भाई एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क मौजूद है। इसी के साथ साथ अगर आप सोप नहीं लगाते हैं, आप फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं, तो भाई आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि व्हाइट एश का विटामिन सी का फेस वॉश भी मौजूद है। तो व्हाइट एश का फेस वॉश भी है जो कि क्रीमी फेस वॉश है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है। तो व्हाइट एश का फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी स्किन को लेकर थोड़ा सा परेशान है, आप टीनेजर हैं या फिर आपकी एज चाहे कितनी हो, लेकिन ये एक्नी जो है आपका पीछा नहीं छोड़ते, एक्नी आपका जो है वो जीना हराम कर चुके हैं, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। ओके जी, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वाले फायदे मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात की अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाएंगे तो आप लोगों के सिर्फ एक्नी खत्म नहीं होते बल्कि आपके चेहरे पर कोई भी चोट का निशान है, जलने का निशान है, कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे कि भाई देखा जाए तो आपके चेहरे पर निशानात काफी ज्यादा आ चुके होते हैं, रिंकल्स बढ़ चुके हैं और बहुत ज्यादा ऐसे चेहरे पर निशानात जमा हो चुके हैं, तो जी वो भी खत्म हो जाएंगे जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लगाने के तरीके कार भी आपको बताते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर व्हाइट एश लवली क्रीम का नाम ना लें तो कैसे हो सकता है। तो व्हाइट एश लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ये जनाब इतना कमाल का प्रोडक्ट है ना कि मैं क्या बताऊँ, ये फेयरनेस क्रीम है। और मेरा अगर आप कहा माने तो अगर आप व्हाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ घर का हर एक फर्द जो है ना वो व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है, ये इतना काम का, इतना मजे का प्रोडक्ट है। तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो कि विटामिंस का जो है ना वो अल्ट्रा विटामिंस का फार्मूला है जिसके अंदर 30 विटामिंस के कैप्सूल्स मौजूद हैं जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, आपकी खूबसूरती को एनहेंस करेंगे और आपकी खूबसूरती में जो ना वो चार चांद लगा देंगे। तो व्हाइट एश लवली क्रीम अगर आप मेकअप से बचना चाहते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, रेगुलर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको व्हाइट एश लवली क्रीम लगाने की बहुत जरूरत है, आप लाजमी व्हाइट एश लवली क्रीम लगाइएगा। और मजे की बात भी बताऊं तो व्हाइट एश लवली क्रीम के अंदर आपको सनस्क्रीन जो है ना वो भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि अब आपको अलग से कोई सनब्लॉक लगाने की जरूरत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाएंगे तो बस काफी होगा, इनफ होगा और आपकी खूबसूरती जो है वो बस बढ़ती रहेगी और आप लोगों की खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी, क्योंकि आपका जो जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाते हैं और आपके चेहरे पर जो
सूरज के खतरनाक असरात आते हैं, तो उनसे भी आपको व्हाइट एज लवली क्रीम बचाने वाली, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है। तो लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, अंकल, आंटियां सब ही व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल कीजिए और जनाब अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए। और लगाने के तरीकेकार, बिल्कुल जी, व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है, तो इसे आप अपना फेस वॉश करके फिर इस्तेमाल करेंगे, सुबह को हो, दोपहर को, रात को, जब दिल करे। बाकी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है, इसे आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, दो मरतबा लगाइएगा, ठीक है। लेकिन लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिएगा। बाकी बात है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम लगाइएगा, सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए अच्छे से, उसके बाद व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही ये फार्मूला, अगर आप ट्राई करेंगे, यही तरीकेकार अगर आप ट्राई करेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से भी अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल सही, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595-1379-7959-99-5। ओके जी, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरती को वेलकम कीजिए, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस निदली के दिए, अस्सलाम वालेकुम स्वीट आशे, वेलकम टू शो, तबीयत कैसी, उम्मीद है ठीक ठाक होंगी, मैं भी साथ साथ हूँ, ओके, जानो को वेलकम कहते हैं। मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ है, मोहम्मद अली खोसो भाई आपको वेलकम एंड खुश आमदीद। अयूब भट्टी भी आपके साथ मौजूद है, वेलकम हो गया जी। योगी बाबा कहते हैं कैसी हो, उम्मीद ठीक ठाक होंगी, हम तो बढ़िया है अल्लाह के करम से, शुक्र रब्बा का, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। योगी बाबा आपको वेलकम कहा जाता है, यदि आज से शो में हम भी शामिल होंगे, कोई इश्यू तो नहीं? नहीं नहीं भाई, मुझे तो अच्छा लगा कि आप वापस आ चुके हैं प्रोग्राम में। और इसी के साथ साथ आदिल कहते हैं आज ये लास्ट में गाना लगाइएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी जी, लास्ट में गाने लगाएंगे, जितने भी सैडी हो, आप ऐसा कीजिएगा लास्ट में जरा मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा जितने भी गाने आपने सैडी वाले बोले। ओके जी, इसी बात पर पोस्ट को लाइक और शेयर भी करते रहिए, और गाने मेरी लिस्ट में है, तो जरा हम साथ साथ गाने भी सुनते रहेंगे ना, गाने का भी मजा लेते हैं, ताकि चस्ट आ जाए भाई, अच्छी अच्छी गाने जो मेरी लिस्ट में लगाए हैं तो सुनने तो बनते हैं। और निदड़ी कहती है हाई भैया मस्त कन्हैया, गर्मी कम हो गई है आज कल, या ये सच है? थोड़ा थोड़ा फर्क है मुझे लग रहा है शायद ज्यादा नहीं पता।

प्रोग्राम है व्हाइट एशियंस स्किन ब्यूटी शो। चाचा खालिद कहते एक तो और मौका मिलना चाहिए टॉपिक आंसर ना करें चाचा ना करें। साथ मना कयो हा।

0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हो। साथ साथ ये हमारे साथी जी मोहम्मद अली खोसो कहते हैं प्रोग्राम जबरदस्त खूबसूरत से चल रहा है। अयूब और प्रोग्राम को सुन रहा है, बाबल खोसो प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, डिवाइड कर दिया आपने सब लोगों को। भक्त अली सियाल हमारे साथ मौजूद है जनाब, वेलकम करते हैं। डूडी कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा, डूडी बिल्कुल आपको गाना सुनाते हैं। वफा अब्दुल वहीद जतोई हमारे साथ हैं। फहीम कहते हैं टॉपिक मिलना चाहिए, सब एक जैसे नहीं होते। अच्छा ओके जी, ये हमारे साथ हैं। आदिल लिखते हैं नहीं, हर इंसान को अंधाधुंध दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। बात मौके की नौयत पर है, दूसरा मौका जरूर दो जब गलती अनजाने में हो गई हो, जब सामने वाला दिल से माफी मांगे और अपनी गलती माने, जब वो बदलने के लिए अमल से साबित करे, सिर्फ बातों से नहीं। ऐसे लोग रिश्तों की कदर करते हैं। और दूसरा मौका मत दो जब कोई जान पूछ कर धोखा दे, इज्जत तोड़े या तकलीफ दे, जब वही गलती बार बार करे और माफी को कमजोरी समझे, जो जब आपको दूसरा मौका देने के बाद भी सुकून की बजाय डर लगे, तो वहाँ हद लगाना खुद से वफादारी है। और कहते हैं दूसरा मौका देना अच्छी बात है, पर अपनी इज्जत और सुकून बेच कर नहीं। माफ करो पर वही जख्म हर बार खाने के लिए हाथ आगे मत करो। कितनी अच्छी आपने देखो बात कर दी। अच्छा साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी मिलना चाहिए। डीआईजी ऑफिस लाड़काना से आप हमारे साथ हैं, माय फ्रेंड है अल्लाह बख्श। और हसीब रिहान आसिफ रजीब मोहसिन फ्रॉम मिठो देरो शो वेरी नाइस, थैंक यू जी, वेलकम करते हैं आप सब भाइयों को। और निदरी कहती है किस चीज का मौका, यानी कि एक इंसान आपके साथ बुरा करे और फिर आए आपकी जिंदगी में और बोले कि मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा ऐसा, तो उसे दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं? सिंपल सी बात पूछी है। ओके जी, आप साथ साथ ये भी बताते रहे कि वाइटेज प्योरी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर चुका है अपनी जानिब और आप इस्तेमाल करने लगना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि ऐसे है ना कि बहुत से लोग पहले जानते हैं, समझते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल आप ऐसा ही बने। आप पहले चीजों को जो है ना वो समझने की कोशिश किया करें, उसके बाद आप जो है ना वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया करें। खास तौर पर जब आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो, तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर जो ना थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। तो अगर आप भी व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जनाब व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप के लिए हैं। तो व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए, सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मजे की बात है कि हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हर तरह का प्रोडक्ट आपको जब मिल रहा है तो फायदा उठाइए उससे, और जी इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स। क्या बात है, क्या बात है भाई, बड़ा खुश है। ओके जी, और डूडी कहते हैं इंसान के बियो मौको बिल्कुल भी न मिलजे, थियो सो थियो हाणे वनी बकरियूं चाराए। असां बरुचन में एक पहाको आहे, कम निकतो ड्रखण विसरियो, तां में ना असां में भी आहे, सभिनी में आहे, सो तव्हां चओ वैसे सही था।
1: कोई रस्ता हो या कोई गली, किसी पर्दे में भी चाहे तू हो छुपी।
0: अच्छा फहीम कहते हैं भाऊ अच्छा सा गाना चवंदा आहियूं, अचण सां गानो चवंदा आहियूं, आखिर में हलंदो आहे, थोड़ी देर कंदासीं त लिस्ट फुल थी वेंदी, पोइ असां काॾे वञूं।

0: बात हो सही
1: है।
0: तेरी ही कमी एक विद्रोही भाई हमारे साथ ही प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। वहीद वफाई हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम सुंदरा जी, क्या हाल चाल है आपके? प्रोग्राम माशाल्लाह बेहतरीन होते हैं। फ्रॉम जकमाबाद से आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू। हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम।

योगी बाबा, बायोमेट्रिक की तो जरूरत होती है ना, चाहे हम कितना ही क्यों ना पढ़ लें, समझ रहे हो? अंगूठो बाबा जरूरी है, जरूरी। आमिर कहते हैं टॉपिक मसूमा, इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए ताकि वो और ज्यादा हमारे दिल दुखाए, इसलिए हाँ। अच्छा ये फहीम कहते हैं, खूब समझते हो तुम भी मेरी अदाओं को फहीम, कि मेरी उठती निगाह को बगावत समझ लिया। अरे मैं तो तुझसे हाथ मिलाने को आया था और तूने उसे भी खंजर समझ लिया। वाह वाह नाइस। बख्तली सियाल, माँ ठीक है, तामुदा की आयो। अच्छा मामा सलमान कहते हैं टॉपिक, हालात पर मुनसर है हर शख्स को दूसरा मौका देना जरूरी भी नहीं, और हर बार इनकार करना भी दुरुस्त नहीं। आमतौर पर हर दूसरा मौका तब दिया जा सकता है जब वो अपनी गलती तस्लीम करे, उसी अपने किए पर हकीकी पछताव हो, और वो अपने रवैये में वाज़े तब्दीली दिखाए, और उसकी गलती से आपकी चलें जी। बात कुल मिलाकर आपने सही कर दी है और बहुत शुक्रिया, इसके ऊपर जरा हम अमल करेंगे। सदाम नहीं सदर दीन बहुत ज़ार हमारे साथ हैं, कहते हैं ओके ओके जी ओके। और वफा सदाम हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद। इखलाक बलोच कहते हैं हाय सुधरा, नाइस यो आंसर, हाँ मौका मिलना चाहिए, शायद सुधर जाए। ना सुधरा तो कौन जिम्मेदार। अच्छा गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ हैं, कैसे हैं जी आप, ठीक ठाक हैं? और बताएं जरा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट लगा रहे हैं या फिर नहीं। फहीम कहते हैं व्हाइट एज लवली क्रीम बेस्ट है, व्हाइट एज लवली क्रीम बाबा गाल तमाम बिल्कुल सही कया है। व्हाइट एज लवली क्रीम जे के मानू हणन पया उन्हें जला बेस्ट ही आए, छो तो तमाजी जिंदगी आसान बनजी वेंदी है। व्हाइट एज लवली क्रीम जे अंदर जेको आने सब चीजू आइन, जैसे कि तमाके सन ब्लॉक भी मिली वेंदो, जे अंदर तमाके विटामिन जी कमी अगर तमाजी स्किन में मौजूद आ तो वहां भी पूरी थी वेंदी। आई तमाजी मेकअप जी अगर या आदत आए, यानी कि खास करे खवातीन जे के होंदी आइन, कोई जॉब तव्हांखे मेकअप जी ज़रूरत पवंदी आहे, त उहा जेका मेकअप जी नीड हूंदी आहे ख़ासि करे गर्मियुनि में, त तव्हां मेकअप लॻाईंदा त तव्हांजी स्किन तमामु घणी ख़राब थी वेंदी आहे। सो मेकअप खां थोरो ज़रा साइड अचो ऐं व्हाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु कयो, तव्हां चुटकिन में रेडी थी वेंदा, तव्हांजी स्किन ते ग्लो बि अची वेंदो ऐं तव्हां ख़ूबसूरती बि तव्हांखे मिली वेंदी, तव्हां शाइन कंदा रहंदा। सो व्हाइट एज लवली क्रीम हिकु यानी कि मुंहिंजो त इहो चवणु आहे त हर हिकु इंसान जी ज़िंदगी में हुजणु ज़रूरी आहे। व्हाइट एज लवली क्रीम ॾाढी कम जी शइ अथव, सो हिनखे तव्हां लाज़मी सभु माण्हू इस्तेमालु करे ॾिसजो, ठीकु आहे? ऐं हा कोई एज लिमिट बि नाहे, ॿार जवान कुराड़ा हर

आबिद बरोई हमारे साथ हैं. हेलो, कहते हैं इट्स सो गुड शो, थैंक यू. और चाचा खालिद कहते हैं कि वैसे हजरत आदम को अल्लाह पाक ने दूसरा मौका नहीं दिया और जन्नत से निकाल दिया. जो टॉपिक आंसर क्या पता. लेकिन माफ तो कर दिया था ना. और उसके अलावा चलें इसके ऊपर वैसे बहुत लंबी सी बात हो सकती है, टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है. तो मैं चाहती हूँ कि आपके जल्दी जल्दी कमेंट रीड कर लेते हैं. सरफराज क्या कहते हैं, बाजी हमारे लिए अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना लगाएगा. बिल्कुल सी लगाते हैं. अच्छा उनका अलावा हमारे साथ हैं. चाचा कहते हैं आप क्यों नहीं करती वाइटिश लवली क्रीम और डी स्किन क्रीम के एड्स या सोप या आपको अलो नहीं. क्या मतलब किस वे में आप कहना चाह रहे हैं. अच्छा डूडी कहते हैं जडे घुमण फिरण लाए तव्हां जी दिल सवे ऐं खीसो खाली हुजे त गूगल वारे नक्शे ते घुमी फिरी वठंदा कयो. मां पाण हींअर अमेरिका में आहियां. सची ॿुधाए बाक़ी वॾो मज़ो ईंदो आहे. अच्छा एक लाख भाई कहते हैं सिदरा शो पे आप सिंधी बोला करें. जब आप सिंधी बोलती हैं तो हाजिर साईं सिंधी ॻाल्हाईंदासीं. ॿियो हुकुम कयो. अवेस अब्बास असां सां गॾु मौजूदु आहे, सो तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि. और अरे बाबा बलोची गानो त मुंहिंजे प्रोग्राम जी बीजी लॻल आहे, सो कहिड़ी ॻाल्हि कयो था. तव्हां बसि पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो. ऐं ॿुधायो तव्हां वाइट हेस जो कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया. ऐं वाइट हेस जा प्रोडक्ट अगरि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहिनि त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-09-05-95-315-79-99-595 नंबर डायल कयो जे तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइट हेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञनि. सो अवेलेबल करायो जल्दी जल्दी ताकि तव्हां बि इस्तेमालु करे सघो, तव्हां बि ख़ूबसूरती हासिल करे सघो. टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो. वापसी जल्दी मोटी जो तव्हां काॾे न वञो, हिते वेठा हुजो मां उहो ई वञी उहो ई मोटां थी. सुंदरी प्रोग्राम वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो.

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बलोचिस्तान में फोर्सेस जो दहशतगर्द इनकलाब गेरिल ऑपरेशन शाबान जारी, वधीक चार दहशतगर्द जहनम भेड़ा। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्द जो अंग वधीक 121 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियन मौजूद बलोचिस्तान में पाक फौज एफसी पुलिस जो गेरिल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन दौरान वधीक चार दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शाबान में मारिजी वियल दहशतगर्दन जो अंग वधी 83 थी वियो। गेरिल ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दन जो अंग वधी 121 थी वियो है।
2: कराची में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकतो। हमले जी रिथाबंदी अफगानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जे मास्टरमाइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्दन डोह जो बेतराफ करे वरतो। पुलिस ऑफिसरन सां गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वजीर ज़ियाउल लंजार चयो आहे ते रेंजर्स कैंप ते चार दहशतगर्दन हमलो कयो हो। टे दहशतगर्द अफगानी ऐं हिक बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स जे मास्टरमाइंड कारी बशीर के रेंजर्स गिरफ्तार कयो आहे। एसएसपी सीटीडी चयो त हमले जी रिथाबंदी अफगानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दन में जानान अब्दुल हादी, उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल। दहशतगर्द उस्मान खे जख्मी हालत में गिरफ्तार कयो वियो। दहशतगर्दन खे अफगानिस्तान खां बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथां गिरफ़्तार कारी बशीर डोह जो बे एतराफ़ कयो आहे।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: मोहम्मद उमेर गोरी 01315724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जी आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके, तो पैनल की जाने बातें हैं, आपकी कुछ मैसेजेस हैं उनको पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ कौस्टर मौजूद, कहती हैं जन्नत आप कैसी हैं, मुझे सॉन्ग तो सुनाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपको बिल्कुल गाना सुनाएंगे। और मेरे खासी अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम बाजी, शो आपका सुपर है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और मेरे खासी अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम नाइस है, सॉन्ग सुनाए कोई भी, बिल्कुल जी लगाते हैं कोई भी गाना। रसूलाबाद का आबिद हुसैन शबानी भाई है, वालेकुम अस्सलाम अदी, लिखते हैं कि अदी जी को दिल ता लही वयो तो पोइन के मौको छा जो डींदा, सही गाल है वैसे। और ये हमारे साथ हैप्पी गर्ल हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सुजानी, शो मौसम की तरह ऑसम है, थैंक यू। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सुजानी, शो थैंक यू बहुत अच्छा है, एक ही मैसेज को आपने दो से तीन मरतबा शेयर कर दिया है, थैंक यू हैप्पी गर्ल। कहती हैं आज का टॉपिक क्या है, मुझे लग रहा है आपने सुन लिया होगा। और फारूक जुनी जो हमारे साथ हैं, अच्छा पिटारो से आप हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम आरजे सिद्रा मुस्कान जी, उम्मीद तो ठीक होंगी आप, जैसा नाम वैसा। ओके जी, ओके कहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, तमाम जबरदस्त शो आपका। तो ओके जी, फारूक भाई आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू। फहाल डेरी है सऊ डेरी फ्रॉम नवाब शाह, कहते हैं सलाम अदी, शो तमाम जो नाइस आए, थैंक यू भा। ओके जी, सो हमने सुना यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना, एक और ब्यूटीफुल गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो हम वो भी सुनेंगे। जीशान रोखड़ी की आवाज में ये गाना होने वाला है, और साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट लगाया या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं, आप ये हमारे साथ जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि भाई जान जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो वाकई खूबसूरत होना चाहते हैं। और ये बात जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिर्फ खूबसूरती जो ना वो गोरा पर नहीं होता, बल्कि आपके चेहरे की खूबसूरती जो होती ना वो ऐसा है कि आपके चेहरे पर एक्नी नहीं होना चाहिए, निशानात नहीं होने चाहिए, आपके चेहरे की स्किन बिल्कुल ग्लोइंग होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए और रिंकल फ्री होनी चाहिए, तब जाकर आप बनते हैं मुकम्मल खूबसूरत। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए, आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए।

और यहाँ पर हमारे साथ हैं एम अंसारी, कहते हैं कि ये टॉपिक मेरे दिल के मतलब ये सिर्फ अखलाक भाई बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। और हैं जी हमारे साथ यहाँ पर गुलरेज अली चानू, कहते हैं माफ करना अच्छी बात है, माफ करना चाहिए इंसान को तो अल्लाह भी माफ करता है, इंसान कितना गुनहगार हो तो हम कौन होते हैं जो माफ ना करे। ओके कहते हैं सलाम, आप कैसी हैं? आज 2 साल के बाद आपके शो में आया हूँ, जो अच्छा है मास्टर मंजूर का गाना लगाइए। बिल्कुल जी लगाते हैं आपके लिए, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। मूसा कोरी हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई को। बिलाल अली हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक बिल्कुल भी मोक्यो नडियन घुर्जे जेड़ा रो तेड़ा खत्मा। चले नहीं, बहुत शुक्रिया। और जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग, हाय सिद्रा जी, आप कैसी हैं? योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। चुप करके सो गाना सुनिए, इस गाने के बाद जो है वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आपने एंजॉय किया और मास्टर मंजूर साहब की आवाज में गाना था। और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश एंड व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी, तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ दिया है, सबको वेलकम एंड खुशामदीद, उनकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पर भाई जान आप लोगों को बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, और यहाँ पर प्रोडक्ट का अगर जिक्र हो तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना, इनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर अगर देखा जाए तो आप लोगों की खूबसूरती जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं तो वक्त के साथ साथ आपकी खूबसूरती जो ना वो मानन पर जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे, आप हमेशा ग्लो करती रहे, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखना है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई एक मयारी ब्यूटी क्रीम है। ये जल्द को नमी फराहम करती है और जनाब चेहरे को नरम, मुलायम और ताजा रखने में भी मदद देती है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द की बेरोनगी कम हो जाती है, चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब खुसूसी अज़ा, जैसे कि आप जानते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम में वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को जो है ना वो खूबसूरत बनाने में काम आते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और साथ में डी स्किन फेस वॉश लगाएं जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को क्लीन बनाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। तो ये लगाने के तरीके बिल्कुल वही होंगे जैसे आप कोई भी सोप लगाते हैं, कोई भी फेस वॉश लगाते हैं, कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना चाहें तो ये नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे सोने से पहले। अपना फेस वॉश कीजिए डी स्किन फेस वॉश के साथ, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, फिर देखिए कमाल कितने अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं।

0: ओके जी, आपने शाद बब्बर की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना सुना और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जी। आप अपने गरीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएं, वहां पर आप मालूम लीजिए, वहां पर अवेलेबल है ये प्रोडक्ट तमाम। अगर मिल रहे हैं तो परचेज कीजिए, नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03157990595। बुढ़ी 315 79 5599 नंबर ते तव्हां खे राब्तो करणो पवंदो। ऐं तव्हां कॉल कयो या मैसेज करणो आहे, ॿुधायो त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे ऐं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे अवेलेबल कराइण चाहियो था। तो अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया त तव्हां मूंखे ॿुधायो जी तव्हांखे इहा बि यानी कि तव्हां अगरि का बि ॻाल्हि पुछण चाहियो था, को अहिड़ो डाउट आहे जेको तव्हां क्लियर करण चाहियो था त तव्हां मूंखां पुछी सघो था। उन खां अलावा अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त इहो मूंखे ॿुधायो जी, मूंखे ख़बर पई त मुंहिंजा कहिड़ा कहिड़ा लिसनर आहिनि जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जो यूज़ कनि पिया। अगरि तव्हां वैसे इहा बि ॻाल्हि आहे, अगरि तव्हां थोरो क्रीमनि खां अवॉइड कंदा त तव्हां पहिरियां डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए ॾिसो ऐं तव्हांखे सुठा रिज़ल्ट मिलनि, उन खां पोइ तव्हां डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम लॻाए ॾिसो, ठीकु आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका सेंसिटिव स्किन वारनि जे लाइ बि ठहियल आहे, ख़ासि करे सेंसिटिव स्किन वारा माण्हू लॻाइनि। ऐं हीअ डॉक्टर जे मशवरे सां तयारु थियल आहे, डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयारु थियल प्रोडक्ट आहे। त तव्हां ट्राए करे ॾिसो, तव्हांजी स्किन सफ़ा वीआईपी थी वेंदी ऐं तव्हां ग्लो कंदा, तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे वापसि मिली वेंदी ऐं तव्हां शाइन कंदा रहंदा। ओके जी, सो कुछ आपके फीडबैक से वो जरा पढ़ लेते हैं। अच्छा, एम अंसारी कहते हैं अगर किसी का किरदार देखना चाहते हो तो उसे अख्तियार देकर देखो। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात। सैयदा बुखारी कहती हैं सलाम अलैकुम मोहतरमा, क्या हाल है आपके, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका नसीब अच्छा करे और आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमामीन। थैंक यू सो मच सैयदा बुखारी, आप हमारे साथ। गुलाम रहीम बलूच हमारे साथ ही, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और हमारे साथ हैं जी बिलाल, कहते हैं कि मुंह ॾिठा आहिनि मुश्किल वक़्त में बदल जंदड़ चेहरा, मुंह सदाई साथ ॾींदे सिर्फ़ ख़ुदा खे ॾिठो आहे, क्या बात है। अली मुर्तज़ा लिखते हैं कि वक़्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। ओके जी, अब्दुल रज़ाक बलोच हमारे साथ है, दादू से आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है, यासीन खंड में सुन रहे हैं। दर्दे दिल कहती है टॉपिक चंदा माफ कर देना चाहिए लेकिन मौका नहीं देना चाहिए, कहते हैं ना जो मौका दे उससे कभी धोखा नहीं दो और जो धोखा दे उसे कभी मौका नहीं दो। ओके ओके जी, और कहती हैं कि आज मेरी कजन आपका शो सुन रही हैं, आयशा जाहिदा अस्मा अरीबा और मेरी छोटी सिस अलीजा भी, सबको वेलकम करते हैं।
1: कुछ तुम सुना देना मुझे कुछ तो।
0: अच्छा, विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोजा से दिलावर हुसैन सोलंगी हैं, बाजी सदर आप कैसी हैं, बाजी हम आपके बड़े फैन हैं, आप चाहे हमारे गाने चलाएं या ना चलाएं लेकिन आपसे नाराज नहीं होंगे, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। और लिखते हैं कि आज कोई गाना नहीं, थैंक्स मेरे भतीजा है सरफराज अली सोलंगी, उनको सलाम कहना और जो आपका शो फेसबुक पर सुनते हैं, और नजीर सोलंगी है, आसिफ सोलंगी एंड मुबशर सोलंगी, सबको वेलकम जी, थैंक यू। और हमारे साथ है मुनव्वर भाई, मुनव्वर अली मुगल कहते मौका देना चाहिए, मेरा अल्लाह भी इंसान को कितने मौके देता है तो इंसान क्या चीज है। ओके वेरी नाइस। हैप्पी गर्ल कहती है सिडो जानी माफ कर देना चाहिए, माफी अल्लाह को पसंद है। ओके वेरी नाइस। और कहती है कि मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करती लेकिन मैं जो है ना अपनी बुआ को गिफ्ट जरूर करूंगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में आप डी स्किन फेस वॉश भी उन्हें गिफ्ट दीजिएगा, ठीक है। और सजाद अली जमाली है, अब्दुल वकील जमाली नवाबशाह से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम जी। ये मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, ठूफ चूसल से मौलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं सरोज जी आप कैसी हैं, खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं। चाचा खालिद बिल्कुल फेसबुक पर थोड़ा इशू आ गया, उस वजह से डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं आप लोगों से, और थैंक यू आप हमारे साथ।

बिल्कुल जी, सब प्रोग्राम आप सुनते हैं जनाब। अगर आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से जो है ना वो स्पॉन्सर्ड किया जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमारे साथ शेयर किया करें कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ताकि सुनने वाले लोगों को पता चले कि बाकी जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट और उनको कितने अच्छे वाले रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और उसके साथ साथ अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, हम क्रीमों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेंसिटिव स्किन के लोगों के लिए तैयार की गई है। ज्यादातर जो है ना आप लोग अगर इस मामले में थोड़ा सा ख्याल रखते हैं अपनी स्किन का कि भाई हमारी स्किन के ऊपर एक्नी ना आ जाए, एक्नी प्रॉब्लम आ जाते तो फिर आप बड़ा परेशान हो जाते, वैसे होना भी चाहिए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है और पाकिस्तान में बहुत ही कम, यानी कि 3-4 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनके अंदर वाइटामिन ई बीड्स मौजूद है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं में शामिल है जिसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है, जो कि आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और साथ में डी स्किन फेस वॉश लगाइए जिसके अंदर जो है ना आपको हाइलुरोनिक एसिड सीरम मिलेगा और ये इतना अच्छा सीरम होता है जो कि आपकी स्किन को क्लीन रखेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हमारी स्किन जो है ना वो रूखी सूखी सी हो जाती है और ऐसा फील होता है कि भाई क्या करें कि हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज दिखे, हमारी स्किन ग्लोइंग दिखे। तो आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करके अपनी स्किन इनको जो है ना परफेक्ट बना सकते हैं। तो लड़के हो लड़कियां हो सभी इस्तेमाल करेंगे, अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन फेस वॉश। ओके जी, लास्ट ट्रैक हमने लिस्ट में लगा लिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है और अब्बास महर हमारा शो सुन रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं इसी के साथ। अच्छा, हैप्पी गर्ल कहते हैं सिडो जानी, अम्मी को आपका हंसना बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच, अम्मी को थैंक यू बोलिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी होती है जी 5 बजे वाले प्रोग्राम में, क्योंकि इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात असांजी थे पई 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो 5 जो इलाही सरो ख्याल रखंदा, आई किथे का गलती थी उजे त माजरत कयूं था, जिना फीडबैक रेजी वयान सभी का माजरत कयूं था। सो मोकलाणी ना ही बाबू सिन सलामत, सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: कार पार्किंग बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमेस्ट्री ए बायोलॉजी जो लेबोरेटरियूं ऑडियो ए विजुअल लेक्चर सिस्टम जी सहूलत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी ए इंग्लिश ते खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल ए इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान ए उते मुनक्कद थिंदड़ मुकाबला तहरीर तकरीर ए ज़हनी आज़माइश जा मुकाबला पंजे अखिन जे नूर न्याणन ए प्यारन पुटन जे मुनासिब तालीम ए तरबियत लाए अजुई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विजिट करियो वधिक राबते लाए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

जी पथरीजो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 03011596851।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

0: It's 4:15 p.m.
1: This track is brought to you by D Skin Beauty Cream.
0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: अगेन वेलकम कहेंगे अपने तमाम सामीन को जी मेरे खास FM88 के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आने वाले सब दोस्त हमारे और प्रोग्राम में सेगमेंट है कौन कितने पानी में। इस सेगमेंट में हम आपसे पूछने वाले हैं कुछ सवालात और आपने बताने हमको इनके जवाबात। तो सवाल नंबर वन है, वो कौन सा खेल है जिसमें पीछे रहने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। वो कौन सा खेल है जिसमें पीछे रहने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। अगर आपको मालूम है सवाल के बाद आपने डायल करना है 03136615688। SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के लिखना है, स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है 8881 पर। आपकी कॉल शामली प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम

जनाब वेलकम कहेंगे आपको, वो कौन सा खेल है जिसमें पीछे रहने वाला खिलाड़ी जीत जाता है? राइट आंसर इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इकबाल आशारी लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, वो कौन सा खेल है जिसमें पीछे रहने वाला खिलाड़ी जीत जाता है? जनाब इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल आशारी ने हमें बताया है, रस्सा कशी है वो खेल जिसमें पीछे रहने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। और आप जानते हैं कि वो कौन सी सवारी है जो आधी अल्लाह ताला ने बनाई और आधी इंसान ने? क्या आप जानते हैं वो कौन सी सवारी है जो आधी अल्लाह ताला ने बनाई है और आधी इंसान ने? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपकी कॉल शामले प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन बात कर रहा है? यास्मीन, वो कौन सी सवारी है जो आधी अल्लाह ताला ने बनाई है और आधी इंसान ने? राइट आंसर है यास्मीन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप शामले प्रोग्राम हुई दुरुस्त जवाब के साथ। फिर क्यों जाने दूर है। तो जनाब गधा गाड़ी है उस सवारी का नाम।

0: जनाब आपने मुझे बताना है वो क्या है जो एक इंसान को दो बना देता है। आपको मालूम है सवाल का जवाब तो आप डायल कर सकते हैं 03136615688 03136615688 हमारा लाइव कॉल नंबर है। उसके साथ ही साथ SMS करने का तरीका आपको बताते चलें। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने MPK लिखना है कि स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर SMS रवाना करना है 8881। पर अक्सा कहती हैं अरे वाह गुल, फेसबुक पर भी पोस्ट है शो की, मेरे आते ही गुड हो गया। नहीं जी नहीं, कि आपके आने से पहले हो चुका है ये गुड जो हुआ है। मुझे अजीब सा लगता है, चीजें जो भी लेनी है ले लो, ये क्या। ओके अक्सा बहुत शुक्रिया, आपने टॉपिक को फॉलो किया। गुड इवनिंग, हाय आरजे गुलनाज जी, हाउ आर यू, गुड इवनिंग टू यू, वेलकम इन अवर शो, आई एम फाइन थैंक यू। अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, आपने प्रोग्राम की पसंदीदगी का इजहार किया, वेलकम कहेंगे आपको, शुक्रिया आपका। हाउ आर यू गुल 78 मोरी से, हमीर चंद, किशोर कुमार, हीरा लाल, पवन कुमार, अरबाब अली, आपको भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं, और DK गणेश चंद, सैयद अहमद, ताज एम अब्बास को आपने याद किया है, बहुत शुक्रिया। और जिन सिंगर्स का आपने जिक्र किया है कल याद करवाइएगा इंशाल्लाह, इन सिंगर को हम ज़रूर प्ले करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, हमने आपसे पूछा वो क्या है जो एक इंसान को दो बना देता है, ये जानने के लिए आपकी कॉल शामिल प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, आजी आजी बोल के कहना पड़ गया, बोल गया।
0: अदा वेलकम कहते हैं आपको, क्या हाल है आपके, ठीक है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अदा वो जी अल्लाह का शुक्र, वो क्या है जो एक इंसान को दो बना देता है?
1: मुझे ख्याल में शीशो है।
0: आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, हम भी आपके ख्याल के हम ख्याल हैं अदा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अदा अजीज सोलंगी थे हमारे साथ और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, शीशा या फिर आईना। और जनाब मजीद सवालों का सिलसिला स्टॉप कर देते हैं यहाँ हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है छोटे से तशरी वक्फे की जानिब भी जाना है। तो जनाब यहाँ पर आपके कुछ टेक्स्ट हैं वो शामिल प्रोग्राम कर लूँ, उसके बाद हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे। आयशा वालेकुम अस्सलाम, वेलकम इन अवर शो, थैंक यू चंदा, आप शामिल प्रोग्राम हुई। और आसमा आपका भी शुक्रिया, आप शामिल प्रोग्राम हुई, दुआओं के लिए थैंक यू। अच्छी बात है आयशा, डेली आप प्रोग्राम में शामिल हों, वेलकम कहेंगे आपको। अच्छा बगैर नाम के जो आंसर्स मिले हैं मुझे वो भी दुरुस्त आंसर हैं। और जनाब यहाँ पर हम जाएंगे ब्रेक की जानी, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।
2: हर दिन जिंदगी की लहर, जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: अच्छा, क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
1: आप ही टॉपिक के बारे में ये कहेंगे आवाज में ज्यादा कम करें।
0: अच्छा, आप भी कम करवाती हैं जब शॉपिंग पे जाती हैं तो? चले, थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया। ओके जी, और मम्मी इसको ये जो है ना, उन्होंने घर का बजट जो है मैनेज करना होता है। और नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहा है?
2: से बात कर रहा हूँ।
0: खुश आमदीद कहेंगे आपको, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
2: टॉपिक के हवाले से ये जो है, ये मर्द हजरा जो है वो सही कम कराते हैं भाई।
0: चलें, ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया, आप शामिल प्रोग्राम हुए।
2: ठीक है, ठीक।
0: ओके जी, और जनाब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, अदिया गुट बाजी खान का गला जो गुलाम है गरमरी।
0: वेलकम कहेंगे अदा आपको, क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
3: अभी टॉपिक के बारे में सीओ चौर कहना से जो मर्द हजरा सन वो सही कम कंदा।
0: चले, ठीक है, मर्द हजरा सही।
3: गुलाम रसूल मरी के का सलाम देन दोस्तन सबनी का सलाम देके बुदन पे।
0: ठीक है, दोस्तों को सलाम पहुंच गया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और मर्द हजरात सही काम करते हैं, थैंक यू। अगर खवातीन ठीक से काम नहीं करें तो आप लोग होटलों पे खाना खाना स्टार्ट कर दें।

सकलेन अब्बास कहते हैं कैसे हो, और बहुत शुक्रिया भाई सकलेन आपका। लड़काना से आपने हमें ज्वाइन किया, अदा थैंक यू तवाजी, मेहरबानी तवा सा के ज्वाइन कयो। आसिफ राजपूत मीरपुर खास से नाइस शो है आज का, ओके बताने के लिए बहुत शुक्रिया। और जनाब जिसने भी ये टेक्स्ट किया है कि पर्सनल नंबर से बात करने का, तो माजरत ख्वाहूं, देखें आरजे का और लिसनर्स का जो ताल्लुक होता है ना वो माइक का होता है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में एडिशन जो है वो नामुमकिन सी बात है, और मैं माजरत ख्वाहूं पर्सनली जो है ना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। और ये जब हमारा माइक ऑन होता है उस वक्त हम आरजे होते हैं, जब माइक ऑफ होता है हम आम इंसान होते हैं, हमारी भी रूटीन लाइफ होती है। तो मेरे सिलसिले में यानी कि आरजे गुलनाज से फ़ोन पे बातें ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माजरत चाहती हूँ। आपका प्रोग्राम पसंद आता है, आवाज़ अच्छी लगती है, तो इसमें तमाम तर जो है वो रब की ही सारी की सारी कारीगरी है, मेरा कोई आर्ट नहीं है। तो जनाब मैं माजरत का हूँ, मैं पर्सनल नंबर से बातें नहीं कर सकती, उसके लिए सॉरी।

मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, समंदर कौन देखेगा, किनारा कौन देखेगा, तुम्हें दिलकश बनाया है मेरी साहिर निगाहों ने, मेरे अंदाज से चेहरा तुम्हारा कौन देखेगा। ये कारजार इश्क है अपने पराए एक हैं, तीर किसने किसको मारा कौन देखेगा, तू उछड़ेगा तेरे हमराह जाएंगी मेरी आंखें, तुम्हारे आने जाने का नजारा कौन देखेगा। जो आशिक है वो जाएगा अगर सोनी पुकारेगी, बिफरते तेज दरियाओं का धारा कौन देखेगा, जरा सा फासला होता है मिलने में बिछड़ने में, तेरी खातिर ट्रैफिक का इशारा कौन देखेगा। मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, समंदर कौन देखेगा, किनारा कौन देखेगा।

अमरीका ऐं ईरान विच में अबनाह हुर्मुज़ तां शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए जी थाकनि ते मिज़ाइल हमला जारी। अमरीकी फ़ौज जी लॻातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बोशहर, चाबहार, जासिक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया आहिनि। हमलनि दौरान ईरान जी दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि ऐं बहिरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बे अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला, बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका जे अलजफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनाह हुर्मुज़ पार कंदड़ ॿिनि ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे। कराचीअ में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकितो। हमले जी रिथाबंदी अफ़ग़ानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जी मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ़्तार। दहशतगर्दनि ॾोह जो एतिराफ़ करे वरितो। पुलिस ऑफिसरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सूबाई घरू वज़ीर ज़िया लंजार चयो त रेंजर्स कैंप ते 4 दहशतगर्दनि हमिलो कयो हो। 3 दहशतगर्द अफ़गानी ऐं 1 बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स गिरफ़्तार कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले जी रिथाबंदी अफ़ग़ानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दनि में जाना, अब्दुल हादी, उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो। दहशतगर्दनि खे अफ़ग़ानिस्तान खां बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो हो। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथां गिरफ़्तारी कारी बशीर ॾोह जो बि एतिराफ़ कयो आहे।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।

कराची में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकतो हमले जी रिथाबंदी अफगानिस्तान में थियण जी तस्दीक हमले जे मास्टरमाइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ्तार दहशतगर्दन डोह जो एतराफ़ करे वरतो पुलिस ऑफिसरन सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो त रेंजर्स कैंप ते चार दहशतगर्दन हमलो कयो हो टे दहशतगर्द अफगानी ऐं हिकु बाजोड़ जो रहवासी हो रेंजर्स जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स गिरफ़्तार कयो आहे एस पी सी टी डी चयो त हमले जी रिथाबंदी अफगानिस्तान में कई वई दहशतगर्दन में जाना अब्दुल हादी उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हो दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो दहशतगर्दनि खे अफगानिस्तान खां बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो आहे 13 सहूलतकार मुलविस हुआ रेंजर्स हथां गिरफ़्तार कारी बशीर डोह जो एतराफ़ कयो आहे बलोचिस्तान में फोर्सिस जो दहशतगर्दन ख़िलाफ़ गॾियल ऑपरेशन शहबान जारी वधीक चार दहशतगर्द मारिजी विया ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दन जो अंग वधी 121 थी वियो सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलोचिस्तान में पाक फ़ौज एफ सी ऐं पुलिस गॾियल ऑपरेशन जारी रखियो आहे ऑपरेशन दौरान वधीक चार दहशतगर्दन खे मारियो वियो ऑपरेशन शाबान में मारिजी वियल दहशतगर्दन जो अंग वधी 83 थी वियो गॾियल ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दन जो अंग वधी 121 थी वियो आहे दहशतगर्द मुल्क खे नुक़सान पहुचाइण चाहिनि था कराची दहशतगर्दन जे निशाने ते आहे रेंजर्स ते हमले में मुलविस सभु जवाबदार गिरफ़्तार थी विया आहिनि कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त सिंध आलमी सीड़पकारीअ जो मर्कज़ बणिजी रहियो आहे हुकूमत सीड़पकारनि खे बहितर माहौल फराहम करण लाइ पुरज़म आहे कणिक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं करे रहिया आहियूं हुकूमती कार्रवाइनि सबबि अटे जे अघ में इस्तिहकाम आयो आहे

आज़ाद कश्मीर में पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हथियारबंदन जो रावला कोर्ट में फोर्सिस शहरन ते हमलो, एक रेंजर्स अहलकार शहीद, एक जख्मी। पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी के हथियारबंदन मतियाल मीरा में बस अडे रावला कोर्ट वेझो शहरी आबादी ते हमलो कयो। फोर्सिस हमलो रोकण की कोशिश कई तो हथियारबंदन जदीद हथियारन से फायरिंग कई। माहिरन मूजिब पाबंदी मड़ियल तंजीम के हथियारबंद जत्थन खिलाफ एक्शन अंटर थी वो है। कराची के वलीका अस्पताल में इलाज कराइंदड़ वधीक एक नींगर में एचआईवी की तस्दीक। सीसी की मातहत अस्पताल में एचआईवी में मुब्तला थियल बारन जो अंग वधी 81 थी वयो। ज़िया कॉलोनी वासी कुटुंब जा टे बारला अगी एचआईवी में मुब्तला। सूबाई वजीर सईद गनी चयो है अस्पताल के अमले गफलत कई, अमलो जिम्मेवारी पूरी करे हा तो इन न थे हा। डॉक्टर समेत 37 मुलाजमन के मुअतल कयो वियो आहे। जैसी भी गफलत आहे उनके नौकरी में कढ़ी केस दाखिल करे जेल माणियो वेंदो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेच में घोटकी जिले में पंजाब के जहरीली पानी की छोड़ खिलाफ दाखिल दरख्वास्त बुधनी। अदालत तलब करण बावजूद ऑफिसरन के पेश न थियण से सख्त कावड़ इजहार करते सिंध ए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी समेत बेन ऑफिसरन जा जमानत थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी कर छड़ा। जस्टिस जुल्फकार सांगी ए जस्टिस अरबाब हकड़ो से बदल आईनी बेच बुधनी कई। अदालत चीफ सेक्रेटरी सिंध ए चीफ सेक्रेटरी पंजाब फिनांस सेक्रेटरी पंजाब समेत लागापियल खातन के ऑफिसरन जा 50,000 रुपये जा जमानत थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी कया। अदालत रिमार्क्स डींदे चयो त छा इंतजामी ए बिया ऑफिसर पान के अदालत का मथाओं समझन था। ये नाजुक मामलो है, जहरीलो पानी इंसानन तोड़े बी हयातियात लाए मसलो बणजी चुको है। ऑफिसर पेश न थी रहा है। कराची में फुर्म अजामत से कतल थियल डॉक्टर आकाश केस जा जवाबदार जाम शोरे में गिरफ्तार। सरियन मूजिब पुलिस सागर ए रामचंद के गिरफ्तार कर जांच शुरू कर छी। मकतूल आकाश के वारसन चयो त आकाश के आखिरी रस्मन बाद केस दाखिल करायो वेंदो। डॉक्टर आकाश के गुजरल डी फुर्म अजामत से कराची में कतल कयो वियो हो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में तकरारों छह जना कतल। दरिया खान मरी वेझो फुल रोड से हथियारबंदन की फायरिंग। दुकान से वेठल नौजवान कतल थी वो। गौसपुर में लौलाई बिरादरी के बिन धुर में जेड़ो संगाती तकरार ता एक जनो कतल एक जख्मी। रादन भरसा भी प्लाट के तकरार ता गोठानो कतल थी वो। जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो। खैरपुर नाथन शाह वेझो भी हथियारबंदन हथा नौजवान कतल। कारण मालूम न थो। लाड़काने के गोठ बगन कोराई में भी पुराने तकरार ता पोरेत के कतल कयो वयो। जाम शुरू वेझो अल मंजर पुल वट भी हथियारबंदन रक्षा से फायरिंग कई। ड्राइवर कतल थी वयो।

0: सिंध में ज़रई पाणी जी खोट बरकरार, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। हैदराबाद में बदीन ज़िले जे आबादगारनि जो पाणी खोट ऐं चोरी ख़िलाफ़ चीफ इंजीनियर कोटड़ी बैराज जे आफ़ीस आॾो एहतजाज। सुल्तानीवाह जे पुछड़ी जे आबादगारनि पाणी जे अथरादू खोट, चोरी ऐं कामोरनि जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। कंदकोट में बि क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुरादवाह में पाणी खोट ख़िलाफ़ डीसी आफ़ीस आॾो धरणो। टंडो ग़ुलाम अली वेझो बि पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि धरणो हयो। मुरादवा जे पूछण ते पाणी ॾियण जो मुतालबो कड़ियो। गहवर में बि आबादगारनि एहतजाज कयो। खैबर में बि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। लाड़काणे में बि अवामी वर्कर्स पार्टी पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। सिंध में 79 दवाउनि ऐं सिरिंज जा नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार। सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मुख़्तलिफ़ एलोपैथिक हर्बल दवाउनि ऐं सिरिंजनि जा 79 नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार ॾेई छॾिया। रिपोर्ट मूजिबि 2461 नमूननि मां 79 नमूना मुक़रर मयार ते पूरा नलथा आहिनि। 30 आटो डिसेबल सिरिंजूं गैर मयारी ऐं जाली आहिनि। आटो डिसेबल सिरिंजूं रुगो हिकु भेरो इस्तेमाल लाइ हूंदियूं आहिनि, पर फराम कयल कुझु सिरिंजूं मुकमल तौर आटो डिसेबल न हुजणु सबबि ॿीहर इस्तेमाल थियण जो ख़दशो आहे। 20 हर्बल शयुनि में एलोपैथिक जुज़नि जी मौजूदगी मिली आहे, जॾहिं त 9 दवाऊं पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वटि रजिस्टर न आहिनि थियल। यकबाबाद पुलिस हथां गिरफ़्तार थियल MNA एजाज जखराणी जो नंढो भाउ आज़ाद जखराणी कराची मुंतकिल। अॻूणे MNA मरहूम बाबल जखराणी जे नंढे पुट मीर आज़ाद खान जखराणी खे यकबाबाद पुलिस सख़्त सिक्योरिटी में कराची जे दरख़्शान थाणे मुंतकिल कयो। MNA मीर एजाज जे नंढे भाउ मीर ज़ैद खान जखराणी जे वफ़ात बाद एजाज जखराणी ऐं संदसि नंढे भाउ मीर आज़ाद जखराणी में इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुआ। ऐं न्यू सैदाबाद थाणे में पुलिस अहलकार मन माछी ऐं संदसि भाउ सजाद पाण खे बाह ॾेई छॾी। थाणे में मौजूदु अहलकारनि ऐं ॿियनि माण्हुनि पुलिस अहलकार मन माछीअ खे बचाए वरितो। संदसि भाउ ज़ख़्मी थी पियो। अहलकार कुझु महीना पहिरीं पुलिस पारां हिरासत में वरितल संदसि मोटरसाइकिल ऐं मोबाइल फोन वापसि वठणु आयो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: दोस्त व्यूज़ तव्हां ते पहुचाईंदासीं जेके मौजूदु आहिनि। छो जो जेको माण्हू सिहतमंद थी वेंदो आहे यकीन हुन जी बि हिकिड़ी ख़्वाहिश हूंदी आहे, उहे पाण बि चवंदा आहिनि त असांखे अलाह ताला जे तरफ़ां हिकिड़ी शिफ़ा मिली आहे। त जीअं ॿियनि खे अव्हां इहो नोट करायो ॿुधायो त जीअं असांखे उहो असांजो मैसेज ॿियनि ताईं पहुचे त उहे बि जेको आहे सो उन मां फ़ाइदो हासिलु कनि। ऐं अचो त उन जा व्यूज़ ॿुधूं था।
1: साल थी विया जेकी तव्हां मुख़्तलिफ़ किथां किथां इलाज
2: कराए
1: जी जी लाड़काणो मेरापुर चमड़ी जे डॉक्टर खे तव्हां ॾेखारियो ऐं ॿियनि डॉक्टर
0: ऐं सम्झां थो डॉक्टर साहिबु असां वटि उहो जेको आहे त असुल में पियल आहे हुन ते नेट ते पियल आहे, एफ बी ते पियल आहे, इन जे करे उहो इंटरनेट सिलो जे करे मसालो पेश अचे पियो। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि, मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था 0301-2196-8051 0301-2196-8051।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बलूचिस्तान में खारिजन खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी। अज वधीक ब दहशतगर्द मारजी विया। मारजी वारनि जो अंगु वधी 85 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाइनि दौरान दहशतगर्दनि जी गाॾीअ खे कामयाबी सां निशानो बणाए वधीक ॿिनि दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। पाक फ़ौज, FC ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन दौरान हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाइयुनि ज़रिए खारिजन खे निशानो बणायो पियो वञे। ऑपरेशन शाबान ऐं ॿियनि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर ते 123 खारिजी मारिजी चुका। वज़ीर आज़म पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत। ख़िते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं जारी रखण जो ऐलान। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान सऊदी अरब सां मुकमल तौर ते एके जो इज़हार करे थो। हमला सऊदी अरब जी सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारी ख़िलाफ़ आहिनि। हमलनि सां ख़िते जो अमुन ऐं इस्तेहकाम वधीक मुतासिर थी सघे थो। पाकिस्तान ख़िते जी अमुन, सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखंदो। अमेरिका ऐं ईरान विच में आबनाए हुर्मस तां शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी। ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए जी थाकनि ते मिज़ाइल हमला जारी। अमरीकी फ़ौज जी लॻातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बो शहर, चाबहार, जासिक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया। हमलनि दौरान ईरान जी दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि ऐं बहरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका जे अल जफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनाए हुर्मस पार कंदड़ ॿिनि ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो। कराचीअ में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकितो। हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जी मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ़्तार। दहशतगर्दनि ॾोह जो बेतराफ़ करे वरितो। पुलिस ऑफिसरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वज़ीर ज़याल अंजार चयो त रेंजर्स कैंप ते 4 दहशतगर्दनि हमिलो कयो हो। 3 दहशतगर्द अफ़गानी ऐं 1 बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स गिरफ़्तार कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दनि में जाना, अब्दुल हादी, उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालति में गिरफ़्तार कयो वियो। दहशतगर्दनि खे अफ़गानिस्तान खां बलोचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथां गिरफ़्तार कारी बशीर ॾोह जो बि एतिराफ़ कयो आहे। दहशतगर्द मुल्क खे नुक़सान पहुचाइण चाहिनि था। कराची दहशतगर्दनि जे निशाने ते आहे। रेंजर्स ते हमले में मुलविस सभु जवाबदार गिरफ़्तार थी विया आहिनि। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध आलमी सीड़पकारीअ जो मर्कज़ बणिजी रहियो आहे। हुकूमत सीड़पकारनि खे बहितर माहौल फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कणिक ज़ख़ीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं करे रहिया आहियूं। हुकूमती कार्रवाइनि सबबि अटे जे अघ में इस्तेहकाम आयो आहे। आज़ाद कश्मीर में पाबंदी मलियल जॉइंट एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि जो रावला कोट में फोर्सिस ऐं शहरनि ते हमिलो। हिकु रेंजर अहलकार शहीद, हिकु ज़ख़्मी। पाबंदी मलियल एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि मतियाल मेरा में बस अॾे ऐं रावला कोट वेझो शहरी आबादी ते हमिलो कयो। फोर्सिस हमिलो रोकण जी कोशिशि कई त हथियारबंदनि जदीद हथियारनि सां फायरिंग कई। माहिरनि मूजिबि पाबंदी मलियल तनज़ीम जे हथियारबंद जथनि ख़िलाफ़ एक्शन अंटर थी वियो आहे।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
2: पीएमएल एन के ऊपर भी सवाल पूछते रहे, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी करते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं किया, मगर

0: लाइन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ब्यौरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो तुर्किया जो आला सतही सरकारी दौरों तुर्क सदर रजब ते बर्दुगान तुर्किया के दिफा वाले वजीर ए तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह से धारदार मुलाकातों तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने खेस गार्ड ऑफ ऑनर पेश वो आई एस पी आर मौज मुलाकात दौरान गडल दिलचस्पी वाले मामलों इलाकई सलामती ए दिफाई सहकार के ख्याल की डेवट कई वही तब्दील जाग्राफियाई ए सियासी माहौल से भी गाल स्टेट जिक भाईवारी मजबूत बनने वो अजम भी वर्चाया वो।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन।

अमेरिका ऐं ईरान विच में छिकताण वधीक तेज़ थी वई। अमेरिका जे ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। ईरान जो बि जवाबी वार। सेंटकॉम मूजिबि बो शहर चाबहार, जासक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला करे ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि तोड़े बहिरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज बि बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। पासदारान इनकलाब मूजिबि बहरीन में अमरीका जे अलजफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो। आबनाए हुर्मस पार कंदड़ ॿिनि ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे। ईरानी क़यादत जी पॉलिसी ईरान खे मुकमल तबाहीअ जे रस्ते ते वठी वञी रही आहे। ईरानी बंदरगाहनि ऐं ईरानी कार्गो जी मुकमल नाकाबंदी लागू कंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त आबनाए हुर्मस में अच वञ ईरान खां सवाइ सभिनी लाइ आहे। आबनाए हुर्मस में तेल अॻु खां वधीक मक़दार में सप्लाई अमरीका जी फ़ौजी ताक़त सां मुमकिन थी आहे।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत, खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं जारी रखण जो ऐलान। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान सऊदी अरब सां मुकमल तौर ते एके जो इज़हार करे थो। हमला सऊदी अरब जी सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारीअ ख़िलाफ़ आहिनि। हमलनि सां खिते जो अमुन ऐं इस्तेहकाम वधीक मुतासिर थी सघे थो। पाकिस्तान खिते जी अमुन, सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखंदो।

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो तुर्किया जो आला सतही सरकारी दौरो। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, तुर्किया के दिफा वाले वजीर ए तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह से धार धार मुलाकातू। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने ते खेस गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कयो। आईएसपीआर मौजूद मुलाकात दौरान गडियल दिलचस्पी वाले मामलों इलाकई सलामती ए दिफाई सहकार के ख्याल की डेवट कई वे। तब्दील थींदड़ जाग्राफियाई ए सियासी माहौल ते भी गालियो। स्ट्रेटजिक भाईवारी वधिक मजबूत बनाने वालों अजम भी वरजाया वो।

आहे हुकूमत सीड़पकारनि खे बहितर माहौल फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कारवायूं करे रहिया आहियूं। हुकूमती कारवायुनि सबबि अटे जे अघ में इस्तेहकाम आयो आहे। आज़ाद कश्मीर में पाबंदी मड़ियल जॉइंट एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि जो रावला कोट में फोर्सिस ऐं शहरनि ते हमिलो। हिकु रेंजर्स अहलकार शहीद, हिकु ज़ख़्मी। पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि मतियाल मीरा में बस अॾे ऐं रावला कोट वेझो शहरी आबादी ते हमिलो कयो। फोर्सिस हमिलो रोकण जी कोशिश कई त हथियारबंदनि जदीद हथियारनि सां फायरिंग कई। माहिरनि मूजिब पाबंदी मड़ियल तनज़ीम जे हथियारबंद जथनि ख़िलाफ़ एक्शन अंटर थी वियो आहे। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद कश्मीर जे टिन ॾींहनि जे दौरे ते मुज़फ़्फ़राबाद पहुची वियो। बिलावल भुट्टो पार्टी अॻवाननि ऐं चूंड उमेदवारनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

0: कराची जे वलीका अस्पताल मां इलाज कराईंदड़ वधीक एक नींगर में एच आई वी जी तस्दीक सी सी जी मातहत अस्पताल मां एच आई वी में मुबतला थियल बारनि जो अंग वधी 81 थी वियो। ज़िया कॉलोनी वासी कुटुंब जा 3 बार अॻी एच आई वी में मुबतला। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त अस्पताल जे अमले गफ़लत कई, अमलो ज़िमेवारी पूरी करे हा त इएं न थिए हा। डॉक्टर समेत 37 मुलाज़मनि खे मुअतल कयो वियो आहे, जंहिंजी बि गफ़लत आहे उनखे नौकरीअ मां कढी केस दाख़िल करे जेल माणियो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003

0: वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता: रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803847।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
1: लागीतो चौथे ॾींहं बि ईरान मथां बमबारी, जज़ीज़े केश ऐं कोज़िस्तान सूबे में धमाका। इन खां अॻु बोशहर, चाबहार, जासिक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदरबास ते बि हमला कया विया हुआ। अमरीकी सेंटकॉम जो चवणु आहे त हमला करे ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकन तोड़े बहिरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज बि बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। पासदारान इनकलाब मूजिबि बहरीन में अमरीका जे अल जफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक वधिक यूटर्न आबना हुर्मस ते 20% टैक्स लगाने वालों फैसलो वापस वी छो। डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरानी क्यादत की पॉलिसी ईरान के मुकम्मल तबाही के रस्ते से वी वही रही है। ईरानी बंदरगाह ईरानी कार्गो की मुकम्मल नाकाबंदी लागू कंदी। आबना हुर्मस ईरान का सवाल सभी खुलल है। आबना हुर्मस में तेल की अग का मकदार में सप्लाई अमरीका की फौजी ताकत से मुमकिन थी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा सऊदी अरब से हमलों की मजम्मत खिते की अमुन और इस्तेहकाम लाए कोशिशों जारी रखने जो ऐलान। वजीर आजम चाहे तो पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल तौर से एके जो इजहार करे तो हमला सऊदी अरब की सलामती खुदमुख्तियारी खिलाफ़ हमलों से खिते जो अमुन इस्तेहकाम वधिक मुतासिर थी सके थो।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो तुर्किया जो आला सतही सरकारी दौरो, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, तुर्किया के दिफा वाले वजीर ए तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह से धारदार मुलाकातू। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने ते खेस गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कयो। एसपीआर मुजिब मुलाकात दौरान गडल दिलचस्पी वाले मामलों, इलाकई सलामती ए दिफाई सहकार के ख्याल की डेवट कई वही, तब्दील थन्दड़ जाग्राफियाई ए सियासी माहौल से भी गालू, स्ट्रेटजिक भाईवारी मजबूत बनाने वो अजम भी वरजाया वो।